प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी है बाहें जना दी पकड़ी है सिर दी जय बाहें ना छोटी है असी जकारा बुलावे सारे उच्ची वाह करनी है सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

आनंद आ गया। चरना दी मौज कोई रचना बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस मौज दा कोई इशारा होवे, कोई मिसाल होवे दुनिया ते, तां उदी मिसाल दे के समझाया जा सकदा। कबीर जी नूं पुछया सी भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दिते, नरक भी निंद दिते, ते चरना दी मौज नूं तुसी बड़ा बयान करदे हो, ओ मौज है कैसी भला दसो तां सही। कबीर जी कहन लगे कोई इस धरती ते मिसाल नहीं है जिदी मिसाल दे के मैं तुहानू समझा सकां भई चरना दी मौज कैसी है। चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरणा दी मौज नूं बयान कर भी देवां, ओ सुभायमान नहीं होवेगा, क्योंकि चरणा दी मौज नूं कौन दसेगा। कह कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, गुंगे नूं मिठाई खवा दिओ तां ओ की दसेगा, कच्छा ही मारेगा नचेगा पर मुंह बयान नहीं कर सकेगा। जेड़े गुरु के लाल अमृत वेले जाग के इशनान करके गुरु दे चरना विच जुड़ के आनंद माणदे हन, गुरु के शब्द रूपी चरना नूं हिरदे विच वसाउंदे हन, ए मौज उन्हां नूं पता है भाई। जे तुम्हें उस मौज नूं मानना चाहना है, उसका आनंद वेखना चाहना है, तो फिर मेहनत करनी पवेगी भाई, जुड़ना पवेगा गुरु दे चरना विच। कहबे को शोभा ने, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हां तां ओ गल सुभायमान ही नहीं होंदी। आ प्यार वालियां नूं जिन्हां नूं चरणा दी मौज चंगी लग गई, ओ कहंदे ने इच्छा नहीं स्वर्ग दी ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरणा दी मंगा महाराज दी। जे तुथा है तां तेरे चरणा दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जावे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़ियां होईयां सन, ते महापुरख कहण लगे गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुन दान करदे कादे लई, कि मैनू चरणा दी प्रीति बख्शिश होवे, चरणा दा प्यार मेरे। ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी कहण लगे जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए तां फिर की मंगोगे। ते सारी संगत हैरान हो गई भई चरणा दी प्राप्ति हो गई फिर हुण मंगण दी की लोड है, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला है। पर बाबा जी दे सामने किसे दी जुरत नहीं सी होंदी कोई बोल जावे, क्योंकि महापुरख दी उडारी ते साडे कलयुगी जीवां दी उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों दी गल उन्हां करनी है असी सोच नहीं सकदे, असी किसे अखरां दा अर्थ तां कर लवांगे पर उसदा भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा हुंदा है ओ किसे होर दा नहीं होंदा। कहन लगे चरणा दी प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, तां फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, तां चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लैण, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान, ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, ता फिर ओ रस ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाई।
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ।

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदे हां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां आप सर

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम आदमी हां एक दमी दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी तेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगलां श्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुदबुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मौत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने शब्द उचारण कीता।

मर्दाने नू हजूर ने कहा भाई जद ए बच्चा जान लगे इस नू रोक लेना एदे कोलों कुछ पुछना चाहुंदे। अज सतसंग दी समाप्ति होई भोग पिया कीर्तन दा धन गुरु नानक पातशाह ने इस बच्चे नू अपने पास बुलाया आख्या बेटा तेरी उम्र तो छोटी है पर सिमरन वाले पासे तेरी लगन किवें लगी है। ता इस बच्चे ने दस्या गरीब नवाज एक वेरा दा जिक्र है मेरी मां आटा गुन रही सी ते मैनू कहन लगी तू अग बाल लै ते छेती नाल प्रसाद तैयार हो जाएगा। मैं अनजान था मैं वड्डियां लकड़ां पहला बालन दा जतन कीता ता नहीं बलियां ता मां ने आख्या पहला छोटियां लकड़ां बलदियां फिर वड्डियां नूं अग लगदी है। जा मैं छोटियां लकड़ां नूं अग लाई ता ओ पहला ही सड़ के सुआह हो गईयां फिर वड्डियां लकड़ां नूं अग लगी ता मैनू ज्ञान हो गया कि मैं भी तो सब तो छोटा हां ते हो सकदा है पहला काल मैनू ही झपट मार दे ते क्यों ना जितने को श्वास परमेश्वर ने दिते हन उना नू जप जप के महापुरुषां दी संगत करके सेवा करके सफल कर लवां। ए बचन जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सुने ता इस बच्चे नू अपने गल नाल ला लिया बच्चे दे कपाट खुल गए क्योंकि ए प्रतीत उना नू ही होंदा है ना जिना ते गुरु दी कृपा होवे। मनमुखता खाना पीना हसना सोना मनमुख नू ता चार गल्लां चेते हन विसर गया है मरना सिमरन विच ओही जुड़दे हन जिना नू मौत याद है। इसलिए हजूर बख्श

बहु पर पंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पैले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनता कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तो नाम का धन चलता है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन की कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास उसके बदले।

नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया भाई पही प्राप्त मानस दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू

हम ऐसे अपराध हर एक बंदा अपने गुणा का इजहार करता है, अपने गुणा की नवाश करता है।

तिन संग सदा विसेरा। जिस घर दे विच तेरे संत जन तेरे सेवक जन कथा कीर्तन करदे ने उस घर वल नूं मैं कदी फेरा भी नहीं मारिया।

एक सच्चा सेवक अपने औगुण गुरु तो कदे भी नहीं लकाउंदा। गुरु नूं दस देंदा है वे सतगुरु मैं एडा गुनाहगार हां, मेरे औगुण तुसी बख्शा देवो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह दरबार सजिया होया है ते सामने एक गुरसिख हाथ जोड़ के खलोता है जिसका नाम इतिहास विच भाई बहोड़ू है। की आख रहा है सतगुरु दुनिया दे सारे

दुनिया दे सारे सुख बना सकदा है, पर एक गल सुन ले, उस तानु दे विचों पापा दी कमाई दे नाल तू दुनिया दे सुख ते बना सकदा है, मन दा सुख नहीं बना सकदा। मन करके कदी भी तू सुखी नहीं होवेगा। दुनिया विच देखदे हां बेशुमार धन वाले बंदे सारे सुख कोल ने ते मन हर वेले दुखी, क्योंकि कमाई पाप दी है।

ते थोड़े समय बाद की बख्शियां होईयां, देड़ा घर इनू नरक नजर आउंदा सी। जिस घर दे विच हर वेले लड़ाई झगड़ा आउंदा रहिंदा सी, अज ए घर इनू स्वर्ग पिया नजर आउंदा है। जिस घर दे विच बच्चे बोल कबोल मंदे बोल बोलदे सन, अज उस घर दे विच वाहेगुरु की आवाज आउंदी है। सतगुरु सोजी दे रहे ने, घर दे विच कलेश लड़ाई झगड़ा भी क्यों, तेरी किरत नहीं चंगी, पापा दे कीते कथे पैसे, पापा दी कमाई दा खरीदया होया पदार्थ जदों बच्चियां दे मुख विच पौना है, वो कूड़ दी कमाई खा के बच्चे बोल कबोल बोलदे ने, घर नूं नरक बना देंदे ने। पर देखो अज गुरसिख ते बख्शा होईयां।

हम ऐसे अपराधी। ऐ सतगुरु देख असी केहो जे अपराध कर दे, देख असी केहो जे अवगण कर दे। सास ग्रास भगती करन वाले ब्रह्म

खुशी विच ले आया है। आखन लगा बाबा जी मैं मुकदमा जितया है, जानी जान बाबा जी। आखन लगे भी इंज कर सारी संगत नू दस तू केड़ा मुकदमा जितया है, ते सत्संगियो इन केड़ा मुकदमा जितया है।

बार आप आए हैं, दुष्ट दमन तू संसार भेजा। कहते ने मेरा मन नहीं करता तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है। पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करता, किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल, किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे, बच्चे नूं आखदे कि मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदे न आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आखदे न।

Heel voor deze dindini. Hey insan, agar tu parmeshwar da naam japenga, odi ot oda asra lavenga, inna bhagtan di tarah, o parmeshwar teri vi rakhya karega, tainu ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करेंगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने। राजे भी सन पर राज कमान दे नाल भगती भी कमाई, जिदे सदका आज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करदे ने, अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नूं अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण दे चक्कर तों रहित हो गए। राज पवीखण अदक करियो, जिस तरह पवीखण नूं श्री रामचंद्र ने रावण नूं मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत हुंदा है उन्हूं सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन्हूं भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु

मध्य भारत ओडिशा वाल से ए राजा अमरीक राजता करता है पर राज पाक दे सुख अपने वास्ते नहीं समझता है। राज भी कर रहे है पर नाल भगती भी ए भी भगती तो दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तो सुदर्शन चक्र नूं ए हुक्म सी तू अमरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरते। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे आ रस्ते दे विच दुर्वासा रिक्की दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिक्की नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिक्की क्रोधी बड़े सन। कहन लगे, राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे? राजा अमरीक कहन लगे, मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिक्की कहन लगे, ठीक है राजन।

मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अमरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी। चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी

दुर्बाशा ऋषि ने हुक्म किया और चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है भगत अमरीक नु मारन वास्ते वधी सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्बाशा ऋषि एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म का काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने चक्र सुदर्शन काल रूप होए पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्बाशा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्बाशा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्बाशा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ए भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हां, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण भन्ना जीओ लै कि ओ ब्राह्मण दुर्बाशा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण भन्ना जीओ लै रखिया ना हंगण देव सबाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनूं फिर कौन बचावे। ए दुर्बाशा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं। तां दुर्बाशा ऋषि शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्बाशा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया। तां ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाणा हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। तां फिर दुर्बाशा ऋषि बैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल। तां विष्णु भगवान कहन लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकदा। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने इंद्र लोक शिव लोक तज ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारियों पासियों इसनू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्बाशा ऋषि के सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया। देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्बाशा तू भगत नूं बुरा कर, तू भगत नूं दुख देना चाहे, इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं तां तेरा बचना बड़ा

फिर दे सदाया जदों ए दरबार शरीफी भगत अमरीक दी शरण विच आया ता फिर अमरीक ने बेनती की थी, ऐ भगवान अपने इस चक्कर नु वापस बुलाओ ते दुर्बादशाह नु बख्श दो। अमरीक ने दुर्बादशाह रिखी दी सुदर्शन चक्कर तो बंद खलास कराई ता भाई गुरदास जी कहंदे ने भगत वछल जय बिरद रखाया। ओ परमेश्वर भगत वछल है वो अपनी बिरद ही रखिया करदा है, भाव कि जेड़ा ओदा हो जावे।

ते सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखे ताकि गत मित कोई न लाख है। प्रभु के सेवक को को न पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मैं कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाख है। जिसका शासन काटते आप ताको राखत देकर हाथ। मानस जतन करत बहुपात तिसके कर्तव्य बिरथे जात। मारे न राखे अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख बिडानी। बारंबार बार प्रभ जपिए ती अमृत इहो मन तन तृपिए। नाम तन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाही दृष्ट आया। नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जंत ताने मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जहवा दिन रात प्रभ अपने जन की दात। करे भगत आत्म कह चाये प्रभ अपने से रहे समाये। जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म बछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर से सब पाप मिठावे। अवर सयान पर सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग। आवन